0: आकाशवाणी है। अब हम आपको रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड यू कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
3: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
4: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने

0: सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आरएन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আরএন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা

0: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग इसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड कीप्स एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स। द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्व्स द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्व्स। दैट इज वाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road Neelam, and everyone is looking

0: forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga asana celebrations here today.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया. और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है. योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है. हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से. माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है. और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा. एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं. योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना.
0: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
1: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है. ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं. इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहां पर की जा रही है. हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं.
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए.
1: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं. पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है. योग साधकों के बीच
0: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की. विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है. और जब हमारे यहां पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं.
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
1: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
1: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
1: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
1: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
0: Guruji, Munish Sharmaji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं। तो
1: जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
4: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। उसका प्रेजेंस हमारी टोटैलिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहां पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
3: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी

0: पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं
1: जी। और यहां पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहां समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
0: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
1: जी।
0: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं
1: जी।
0: वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि
1: जी। मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
2: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
2: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
2: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है
1: जी।
2: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हो तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
0: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
1: जी।
0: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhansa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
0: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूं, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
0: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
3: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
1: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहां पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
3: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी, और अब यहाँ अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहां पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहां पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
0: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारे रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये
1: जी। और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है, और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
3: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
1: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है। इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है
1: जी।
0: तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है
0: आसन,
1: क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
0: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
1: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री

0: जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन इन द परफेक्ट मैनर. एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसन, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स.
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है. और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं, इसमें पेट के बल लेटना होता है. और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है, उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है. और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ है, टोज बाहर की तरफ, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
0: जी.
2: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं. साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है, उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है. साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
0: जी. और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं. अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है. हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है. तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर, उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले. मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है, बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं. और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन. यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं. भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है. इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
2: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे. ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है. और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है. साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है. स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
0: जी.
2: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है. और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है. यहां पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
0: जी. गुरु मुनीश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहां हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं. आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
1: जरूर जरूर. एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती. अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं. और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है. और मैं तो ये बहुत खुश हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है. आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं. तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं. बहुत ही सुंदर
0: जी. और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना. और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है. सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन. इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी.
2: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
0: जी,
2: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है. साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
0: जी।
2: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से, और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है। सेतुबंधासन
0: जी, सेतुबंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
2: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी,
2: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु है उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं, तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
0: जी। गुरु गणेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
1: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध
0: जी।
1: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाए, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है। हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनके जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो देट अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
2: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपालभाति, कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाती मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी

0: विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरैक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहजासन में सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामिन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्त अभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है। जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है, डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये।
1: जी,
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार

0: पर की जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। हाँ। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
1: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं।
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratibha,
1: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
0: जी,
1: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
0: जी, और गुरु मुनीश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपके जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान के सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेब्स में अभी तरंगित है, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है।
0: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना
4: शांति
0: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर,
0: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
4: और धीरे धीरे,
0: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was

0: Indeed, a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai, to humne namaskar kiya hai aur saath hi yog abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jinmein jahan jahan Bharatiya dutawas hain, unki or se vishesh ayojan honge. Aur ab kyunki bahut sare desh duniya ke yog ko apna चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है. तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें.
0: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड, एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinha ji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, sabse pehle main jo log dhyan karna chahte hain, dhyan ki duniya mein aana chahte hain, to main unse request karunga ki bahut zyada technicality mein wo na jaye, sirf statue banke 10 minute रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें. एक समय चुने, 10 मिनट या 15 मिनट, वो सिर्फ स्टैचू हो जाए. जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे. अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठे और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाए, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी. कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं. आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस. मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं. मैं एक दृष्टा हूं. द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है. आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शियसनेस में विलय हो जाता है. जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है. फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है. फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास. इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते. ह्यूमन जितने भी इस पूरे पृथ्वी पे, जगत पे जितने भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है. इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं. द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं,

0: तो वो जाने अनजाने में इस पूरे ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डली लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शियसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शियसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शियसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहां पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग

0: जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है। और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से, आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: नमस्कार। कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए।
2: 12वें अंतर्देशीय योग दिनത്തോടനുബന്ധിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്തയിലെ റെഡ് റോഡിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം നൽകിയ യോഗാഭ്യാസ പ്രദർശനത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണമാണ് ഇതുവരെ കേട്ടത്.

0: ആകാശവാണി.
1: ये आकाशवाणी है. 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
2: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां. तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है. अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है. और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं. इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12

0: वर्षों में जो ये चार वर्ग है इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
1: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
1: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
0: जी।
1: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते, आप स्वेटर भी बुनते, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
0: जी।
1: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किस्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
0: बहुत इंपॉर्टेंट सशक्तिकरण,
1: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
0: बिल्कुल,
1: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं की

0: जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता
0: है। अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है IT से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी है, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है MBBS की 50,000 और बढ़ने वाली हैं। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो हैं वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों,
2: खेलो इंडिया, वही वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए हैं, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
2: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
2: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
2: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत।
1: तो सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
2: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
2: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इसे। और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
2: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: और बड़ा समर्थन है।
2: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट
2: में, 2,000 के, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
2: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान लिया कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गया है, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
2: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल संजना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ है ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये

0: मार्जिन वाले सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
1: इस वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
0: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
1: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
0: जी।
1: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद
0: सेट हो जाता है,
1: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कम वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
0: जी।
1: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
0: हाँ।
1: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
0: बहुत बड़ा,
1: हम इसको एक अगर देखे तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं महिलाओं के लिए, अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया
0: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की वो भी अलाइव,
1: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
0: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है,
1: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
0: जी,
1: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
0: जी,
1: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
1: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप, सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
0: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
1: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
0: जी,
1: टिक्की वाला,
0: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
0: एक अवेयरनेस क्रिएट,
2: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं, और उनकी जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
0: विकास, और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
2: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
0: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की, और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
2: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं, तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो कहोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक है, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
0: सर्जना जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
1: देखिए मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
0: जी,
1: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले, ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
0: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा
1: रामासर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो चार स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: उठाना चाहिए, जो है दीप्ति शर्मा। एंड उसके साथ वो एक्सपीरियंस के साथ साथ उनको ये भी पता होता है कि वो कहाँ पर किस बैटर को कहाँ पर बॉल डाल सकती हैं और कहाँ उनका स्पॉट है बॉलिंग का। इस बैटर की डेब्यू प्लेयर से ना करा के हम उनको वहाँ यूज करें जहाँ विकेट्स की जरूरत है।
1: वेरी क्विकली उतरा, आई वांट टू आस्क, सिंस इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट एंड यू नो इट्स अ बिग डे टुडे, योगा डे, वी विल टॉक अबाउट दैट अ बिट लेटर, बट देन शेफाली वर्मा, यू थिंक द वे आई थिंक दैट शी इज अ बिट इनकंसिस्टेंट whether she's going to score today or no, you have a same thought about her?
2: I think Shefali has, a lot of people have been very unfair to Shefali, क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया था तो जिस तरह से शुरू किया था उन्होंने वहां पे, तो people expected her to go bang bang every game, every innings, and then go and score those big runs. But we have to remember, people evolve, players evolve, she's becoming mature and she has also learned how to handle herself. It took her some time, but yes, I think the inconsistency was more about handling the pressure of what people expect from her every time she goes out, and what the team situation is and what she actually needed to do as a player out there. But I think she's grown, she's become more evolved and mature, she now understands the game better. So wo consistency ab dheere dheere aayegi uske game mein, aur wo aapko uske game mein nazar bhi aata hai. She's not going to go jaisa aajkal hum Vaibhav Suryavanshi ke liye bol rahe hain, she's not going to go bang bang from the first ball. She's become a mature player, and that's what, and that's why the consistency has improved in the last few years.
0: And humne yahi Shefali Verma ka humne yahi Shefali Verma ka last match mein dekha tha ki unhone air shot nahi khele the, groundy shots khele the. Ye improvement hai.
1: Wow. मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट होता है ना, मैं मेडिटेटिव मोड में चले जाता हूँ, कुछ ना कुछ अपने आप को शांत रखता हूँ आंख बंद करके। और आज एक बहुत बड़ा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो रविंद्र भाजी आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में योग ने आके कुछ चेंज किया? आप योग फॉलो करते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कोलकाता जो राजधानी है वेस्ट बंगाल की, वहां रेड रोड एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे जाके उन्होंने आज बहुत लोगों के साथ योग दिवस मनाया। आप योग को कैसे लेते हैं अपनी जिंदगी में?
3: देखिए, अभी आपने बोला कि जब भी मैं किसी तरह उसमें रहता हूं तो मैं वापस योगा मोड में आ जाता हूं, यही सबसे बड़ी बात है। ये प्रेशर गेम है, ये प्रेशर, इतना प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर, इतना होता है इनके लिए, तो योगा मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में योगा टीचर्स भी, बड़ी बात नहीं कि योगा टीचर्स भी टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि इनको जो अपना फोकस रखना है अपना, कई बार तो मैंने देखा कई प्लेयर्स को मेडिटेशन करते हुए देखा, अपना फोकस, अपना दिमाग को स्टेबलाइज करने के लिए, कुछ कंसंट्रेशन करने के लिए, ये योगा एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हुआ है और क्रिकेट का, और इवन कई सारे स्पोर्ट्स का, और हर लोग, मुझे लगता है कि हर प्लेयर उसको जरूर ना कुछ कहीं ना कहीं कितने रूप में फॉलो करता है।
1: वैशाली, आपको कैसे इवॉल्व किया योग ने, एंड हाउ डू यू थिंक दैट इट्स बेनिफिटिंग द मॉडर्न स्पोर्ट्स एरा नाउ?
0: योगा का, मुझे लगता है कि योगा का ना बहुत पॉजिटिव रोल है, सिर्फ एथलीट्स पे ही नहीं, बाकी लोगों पे भी। एंड अगर एथलीट्स की बात करें, क्रिकेटर की बात करें, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो टाइट मसल्स होती है ना, वो हमारे हिप्स, शोल्डर, हैमस्ट्रिंग को खोल देती हैं, एंड ये हमारे ना बैटिंग के बैकलिफ्ट, बॉलिंग का फॉलो थ्रू एंड फील्डिंग के ड्राइव पे बहुत स्मूथ असर देता है और बहुत स्मूथ फोकस चलता है। और अगर मैं बैलेंस की बात करूं, तो योगा हमारा, हमारी बैटिंग के लिए बैलेंस हमें देता है एंड आपको मूवमेंट डायरेक्शन करने में हेल्प करता है, और उसके साथ इसको मेंटल फोकस, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत लॉन्ग टर्म का, बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला गेम है, तो उसमें मेंटल फोकस और प्रेशर हैंडलिंग गेम बहुत जरूरी है, तो वो योग से ही हमें मिलता है।
4: जी बिल्कुल। उत्तरा, आपका कोई अनुभव योग को लेकर?
2: मुझे लगता है योग इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो जिस तरह से होता है, शायद योग से ज्यादा एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल कुछ नहीं है, बिकॉज उसके इतने वेरिएंट्स हैं, एंड ऑनेस्टली हर किसी के बस का नहीं है वो बैठ के एक घंटा पूरे तरह से ध्यान लगाए, और लोगों के लिए फोकस करना या मेडिटेट करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। बहुत से प्लेयर्स हैं जो गाना सुनते हैं और अपने आप के साथ रहना पसंद करते हैं 5 मिनट के लिए, तो म्यूजिक इनकॉर्पोरेट करना, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वहां पे डांस योगा और स्टीम योगा और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो योग से ज्यादा मुझे लगता है हर किसी को सूट करने के हिसाब से कोई और ऐसी एक्सरसाइज मॉड्यूल अगर हम देखें तो कुछ और है नहीं जिसमें आप अपने हिसाब से योग को ढाल सकते हैं और योग के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे

0: एडेप्टेबल, मैलिएबल या फ्लेक्सिबल कोई भी एक्सरसाइज का तरीका है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और को किसी और चीज की जरूरत पड़ती है योग के बाद.
1: आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे मुदिता, बिकॉज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव था, एंड ऑफ कोर्स यूएन में जाके अंतर्राष्ट्रीय योग डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, और आज माननीय राष्ट्रपति जी भी जबलपुर मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वहां पहुंची थी. बट वील कम बैक टू द गेम वेयर ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस रिमेन्स यू नो एट द पीक फॉर द टॉप प्लेयर्स.
2: बिल्कुल रविंदर, फील्डिंग की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका इज अ वेरी शार्प फील्डिंग साइड एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट वन्स इनटू टूज अगेंस्ट देम. वन ऑफ द बेस्ट बाउंड्री सेविंग टीम्स भी है वो, तो क्या ये मुकाबला आज रन बनाने से ज्यादा रन बचाने का साबित हो सकता है?
3: देखिए, फील्डिंग हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, बैटिंग बॉलिंग तो होता ही है, फील्डिंग में आप जितने रन बना सकते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और वो ही कई बार 20 ओवर के मैच में मार्जिन बहुत ही कम लेवल, बीच में जो उनका डिफरेंस होता है मार्जिन तो बहुत कम होता है, वही 2-4 रन लास्ट में वो मैटर करते हैं. लेकिन अब वो इंडियन टीम ने भी काफी इंप्रूव किया है बीच में, काफी पहले तो इंडियन टीम की बैटिंग फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब काफी इंप्रूव किया है. लेकिन साउथ अफ्रीकन शुरू से ही मेंस लीजिए या वुमेन दोनों लीजिए कमाल के रहे हैं, और अभी तक आपको अगर कोई किसी से भी अगर जो ना भी स्पोर्ट्स जानता हो उसे पूछेंगे कि किसी फील्डर का नाम बता दो साउथ अफ्रीका का, तो सबसे पहले उठ के बोल देगा जॉन्टी रूट्स.
1: एब्सोल्युटली. और जॉन्टी बनने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की है मेन क्रिकेट में, बट ऑफकोर्स फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स के साथ हम बैटिंग के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं. स्मृति मानधना के बारे में बात करना चाहूंगा, 142 रन बना के शी इज द टॉप रन गेटर एट द मोमेंट वैशाली, 2 consecutive 50s. You think that builds up a pressure? किसी player पे एक pressure होता है कि मैंने 250 बना दिया, वॉर expectations बढ़ गई?
4: प्रेशर तो हर गेम में होता है, हर प्लेयर का होता है, और उसके साथ हमें ये भी देखना होता है कि साउथ अफ्रीका टीम जो खेल रही है उनके अगेंस्ट उन पे ज्यादा प्रेशर है एज कम्पेयर टू स्मृति, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी में है और उनको आउट करना बहुत जरूरी है उनके लिए, क्योंकि वो एक पार्टनरशिप, शफाली की और स्मृति की पार्टनरशिप के बारे में हमेशा बात होती है और वो वहां पे स्टे भी करते हैं. उनको ये पार्टनरशिप बहुत 3000 कुछ समथिंग रन्स की भी है, एंड वो पार्टनरशिप तोड़ना उनके लिए बहुत जरूरी है. और शफाली वर्मा को जिस वे में स्मृति मंदना लास्ट मैच में खिला रही थी उनको बोल बोल के कि आपको किस वे में रुकना है और कहां पे आपको स्टे करना है और कौन सी बॉल को आपको किस वे में करना है, तो वो एक है ना एक्सपीरियंस प्लेयर कहलाता है, दिखता भी है अंदर से.
2: जी वैशाली, टॉप ऑर्डर की आपने बात करी, लेकिन इंडिया हैव शफल्ड देयर बैटिंग ऑर्डर इन द मिडिल ऑर्डर इन बोथ द मैचेस. क्या इससे प्लेयर्स का रिदम बिगड़ता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर शुड हैव क्लियर रोल्स, स्टेबलाइजर हो, एक्सेलरेटर हो एंड देन फिनिशर. आर दोज रोल्स ओवरलैपिंग, और क्या इससे प्रेशर सिचुएशंस में बैटिंग कोलैप्स कर सकती है?
4: प्रेशर तब आता है जब अगर पार्टनरशिप नहीं, आप नहीं तोड़ पाते, तो वो सामने वाली बैटिंग, सामने वाली टीम पे प्रेशर आता है. लेकिन जहां पर हमारी पार्टनरशिप टूट गई तो दूसरा जो बैटर अंदर जाएगा उस पर प्रेशर ज्यादा आता है. और मिडल ऑर्डर की बात करूं तो वहां पे यास्तिका भाटिया की जगह पे मैंने अभी पहले भी बोला कि अगर हम दीप्ति शर्मा को ऊपर लेके आते तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि लास्ट मैचेस में उन्होंने काफी बेटर स्कोर किया है यास्तिका भाटिया को अगर हम कंपेरिजन करें तो.
1: राइट देन, दो चेंजेस जो हुए हैं, तस्मीन ब्रिट्स और दानी वैन निकर अंदर हैं, और सुने लूज और काला रहने के मिस आउट कर रही हैं साउथ अफ्रीका के लिए. और ताजा खबर यह है कि दोनों ही देशों का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो मैदान के बीचों बीच आया है, और आईसीसी का ध्वज और उसकी दाईं तरफ भारत और बाईं तरफ साउथ अफ्रीका का फ्लैग, और प्लेयर्स वहां पे तैयार हो रहे हैं नेशनल एंथम के लिए. बहुत जल्दी से हम यहां पे रविंदर जी आपसे मैं बड़ी जल्दी जानना चाहूंगा कि इंडिया का रन रेट बहुत अच्छा है 3.98, साउथ अफ्रीका इज -1.10. ये कांटे की टक्कर, स्पेशली जब हम 50 ओवर के फॉर्मेट में वो जो फाइनल हमने देखा था, साउथ अफ्रीका जानते हैं कि हमारे को एनआरआर भी मेंटेन करके रखना है.
3: देखिए, एनआरआर का तो डिफरेंस रहेगा ही, और इंडिया अभी जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा हो चुका है. लेकिन ये देखिए कि ये जो आज इंडिया को उस रनरेट को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे मैंने देखा है जो चेस करने वाले ज्यादातर जीते हैं, काफी जीते, और जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है, लॉरा देख ली, डर्कसन देख ली, इवन क्लर्क जो कि काफी फॉर्म में चल रही है दोनों के दोनों मैचेस में, तो इंडिया को एक अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका गेंद कम, और उसी को क्योंकि जानते हैं कि ये 20 ओवर्स के मैच में दो प्लेयर्स ही खड़े हो जाते हैं तो मैच को बराबर कर देते हैं.
2: जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं.
5: नमस्कार मैडम.
2: नमस्कार,
5: मैं अमरावती, महाराष्ट्र अमरावती से प्रकाश बात कर रहा हूं.
2: जी प्रकाश जी, अपना सवाल पूछे.
5: अरे हाय मनीष जॉली सर.
1: हेलो जी,
5: कैसे हो यार?

0: मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं?
1: अरे आप क्या आवाज सुन सुन के बड़ा हो रहा हो यार। अच्छा ठीक है,
0: ये कॉम्प्लीमेंट था क्या? जी बताएं।
1: एक क्वेश्चन रख रहा हूँ
0: जी। जी
1: जो रवि सर मेरे क्वेश्चन का बहुत आई मीन अच्छा जवाब दे पाएंगे ऐसा लगता है मुझे। कि देखो जो बाकी कैप्टन है या फिर नेट सुपर ब्रांड को देखो या फिर और कोई, तो मुझे ऐसा लगता है कि हरिदी का जो फॉर्म है ना, तो जैसा चाहिए अपने लिए वैसा हो नहीं पा रहा। दोनों मैच में एक मैच में 32, एक मैच में 17 ऐसा ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट तक उन्होंने एक एक एक और संभाल के खेलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है।
0: बात कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस से थोड़ा सा उतना खुश नहीं है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा संभल के खेलना चाहिए, होता है ना, टेंटेटिव होता है।
2: पर्टिकुलर प्लेयर की बात,
3: हरमन,
2: अच्छा हरमनप्रीत जी। या देखिए हरमनप्रीत एक, अब इससे बड़ा क्या होगा, 200 का मैच खेल रही है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और अब उनको पता है कि किस मैच में क्या, किस मैच में अपने अपने गेम को किस लेवल पे लेके जाना है। तो ये जो अचीवमेंट है वो अभी तक कोई मेंस भी नहीं पूरा कर पाया जो उन्होंने आज पूरा करके दिखाया। आप चिंता मत कीजिए, जो जरूरत पड़ेगी तो हरमनप्रीत आपको उस समय मैच को जिताते हुए मिलेंगे।
0: उथरा वेरी क्विकली बिकॉज वी विल हेड टुवर्ड्स ओल्ड ट्रैफर्ड, द रिकॉर्ड से दैट पीपल द टीम्स हु हैव चेज्ड हैव मच मोर परसेंटेज इन विनिंग द गेम्स। यू थिंक दैट्स अ फियरिंग फैक्टर फॉर इंडिया, दे चोज टू बैट आफ्टर विनिंग द टॉस, एनीथिंग टू कंसर्न?
4: I think the kind of players we have, if they do the way, if they play their normal game, records don't really matter much for India, and we have the capacity and the capability to win whether we chase or we set the total, and if they set a high enough total we have the bowling to restrict the opponent at any level that we want.
3: चलते चलते एक सवाल रविंदर, हरमन को हम लंबे टाइम से कप्तानी करते देख रहे हैं, बट डू यू थिंक शी लुक्स मोर कॉन्फिडेंट एज अ कैप्टन देन एवर बिफोर? जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट कर रही है, खासकर शेफाली वर्मा को जिस तरह से पावर प्ले में यूज किया उन्होंने पिछले मैच में, इसके अलावा डीआरएस को लेकर ओडीआई वर्ल्ड कप में कई बार सवाल उठे थे उन पर, लेकिन अब उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस, वो अश्योरेंस दिख रहा है ऑन द फील्ड।
2: बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको पर जो कॉन्फिडेंस आया है उनके पास, वो वाकई देखने लायक बिल्कुल है। और अब वो मैच्योर क्रिकेटर हैं, पुराने मैं कहता हूं काफी इतने सालों से खेल रही हैं, अब इस समय वो मेरी इससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं हो सकता। और इस समय इंडिया के पास जो हरमनप्रीत है वो एक एसेट है, इस समय वो कितना आगे इस समय चला पाएंगी और वो देखने वाली बात है। लेकिन हरमनप्रीत का जो वाकई आप सही कह रहे हो, जो उनका डिसीजन ले जो टेकिंग जो एलिबिलिटी है बहुत ही बढ़िया है। डीआरएस को पहले नहीं ले पाते थे, लेकिन अब वो जो डीआरएस जो लेती है उसकी वाकई बहुत ही बड़ा रीजन है
3: जी। और चलते चलते प्रेडिक्शंस, उत्तरा आपसे शुरू करते हैं, कितना स्कोर
4: है? जीत का या स्कोर का?
3: बिल्कुल दोनों बताइए।
4: ये चाहते हैं कि इंडिया जीते, नॉट सरप्राइजिंग, बट आसान नहीं होगा बिकॉज साउथ अफ्रीका इजी बिल्कुल नहीं आपको जीतने देगी, और टोटल आई थिंक क्लोज टू 200 जाना चाहिए
3: जी। वैशाली
5: 180 अराउंड,
3: रविंदर
2: 180 के आसपास सही रहे
3: जी। बिल्कुल, तो अब देखते हैं, हमारी कमेंट्री टीम आपके साथ जुड़ेगी और हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, मैं संजय सरीन, अपने साथी कमेंटेटर। किशन कुमार के साथ आज भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड कप का यह बहुत एक अहम मैच खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर। कुछ देर पहले टॉस हुई और टॉस भारत ने जीती और भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम आज इस प्रकार रहेगी: कप्तान हरमनप्रीत कौर, जमेमा रेड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, यशिका भाटिया, अरुणादिति रेड्डी। आज एक नया नाम जो इस टीम के साथ जुड़ा है वो है प्रेमा रावत, श्रीचरणी और नंदनी शर्मा। ये होंगे भारत के आज प्लेइंग 11। प्रेमा रावत को स्थान मिला है श्रियंका पाटिल की जगह, जो चोटग्रस्त होकर बाहर गई हैं, और आज प्रेमा रावत अपना मैच खेलेंगी, पहला मैच आईसीसी वर्ल्ड कप।

0: ये इस 2026 का। और साउथ अफ्रीका की टीम अपने कप्तान लॉरा वॉल्वर्डाट के साथ टीम में उतरेंगी। मजीना कैप, तुमी शेखुखुने, शिनालो राफ्टा, क्लो टैशन, नानकुले मलाबा, नंदनी डक्लाक, एनरी डक्शन, डैनवेन निकक और आयोबोंगा खाका जो उनकी बोलर हैं, तेज गेंदबाज, ये टीम में शामिल रहेंगी। और ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में दोनों टीमें अब बिल्कुल सेट हैं। भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी और साउथ अफ्रीका की टीम पहले गेंदबाजी करेगी। टॉस भारत ने जीता जैसे मैंने आपको बताया। स्मृति मांदना और क्रीज पर मौजूद ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के इस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का ये अहम मैच खेला जाएगा। शेफाली वर्मा और स्मृति मांदना इस समय क्रीज पर हैं। शेफाली वर्मा का रैंक 7 है इस समय और स्मृति मांदना का रैंक 7 है और शेफाली वर्मा 20 के अपने आईसीसी रैंकिंग में है। मार्जना कैप गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी। 123 मैच उन्होंने खेले हैं, 97 विकेट्स उनके नाम पर हैं और सामना करती हुई भारतीय बल्लेबाज एक अहम मैच में। किशन कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अहम मैच में। भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मैच जो खेला जा रहा है, अपने सुनने वालों को मैं बता दूं, मोहम्मद इशाउद्दीन हमारे स्टैटिस्टिशियन होंगे इस मैच में और भागवत सिंह रावत जो हमें बताते रहेंगे क्या क्या स्कोर इस मैच में बन रहा है। ओवर टू यू कृष्ण कुमार जी।
1: या थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल लिसनर्स अक्रॉस द कंट्री। अ वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम दिस इन द आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, एज इंपॉर्टेंट एज यू मे प्रॉबली वांट इट टू बी, बिकॉज रिमेंबर दैट India and South Africa also played a bilateral recently, and also the ODI World Cup final, which India won. Here's the first ball, and Smriti starts off beautifully off the pads. It's been whipped away. Should get a couple for that, and India are on their way of the very first delivery, 2-0 loss. Now, in the context of this World Cup, also this is a very, very important game. Because India won both their games. Should India win over here, they get into the driver's seat. And a lovely, confident-looking stroke on the onside off her pads by Smriti Mandana. It's a kind of a bread-and-butter shot for her. And that went down to mid-wicket for a couple. Once again, on the middle and leg, played defensively forward by Smriti. On the onside, no runs result. Now, it'll be interesting to see how India really approach this innings, because the power play is going to be very important, and they would certainly want to have a good start with a very good power play and then build it on from there on, because South Africa is a very good batting side and they can really give it a good chase, a good total. Marizan Cup outside the off stump, flowing off drive, good stop there at mid off inside the 30-yard, and no runs result. So after a couple of the very first delivery, two dots here from Marizan Cup. And as I was saying, you know, South Africa will want to win over here. Remember, they lost to Australia and they lost by big margins. So if they lose again over here, they'll have a major problem in this tournament from here on. They've got Netherlands to play. They can beat them by a big margin, but Bangladesh are no pushovers, so it'll be very difficult for South Africa from there on. Once again, played on the onside for a single to the ball in the leg and middle stumps from Marizan Cup. And so it's so important, this game, that both the teams want to win and push forward for a place in the semi-final.
0: बात आपकी बिल्कुल ठीक है केके, क्योंकि ये मैच ऐसा मैच है जिसे हम आप क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वो अपना स्थान सेमीफाइनल में पूरा करने के लिए बहुत करीबी करीबी पहुंच जाएगी। और स्मृति और शिफाली की इस जोड़ी से भारतीय टीम को बहुत उम्मीदें हैं। शिफाली वर्मा पहली बार सामना करती हुई मार्जन कैप का, 4 गेंदे अभी तक फेंकी गई हैं और इन 4 गेंदों में भारत ने 3 रन बनाए हैं। मार्जन कैप अपनी फील्ड को कुछ एडजस्ट करती हुई, बट क्योंकि एक बात बहुत जरूरी जो है कि ये जो ओपनिंग स्टैंड है हमारा भारतीय टीम का, इस पूरे भारतीय टीम का जो बेस है इस ओपनिंग स्टैंड से बनने वाला है.
1: Yeah, I mean, it'll be very important to see how Shefali goes about this. She likes to hit it over the top. Here's Mirzan cap into Shefali Verma. That's a good ball on the off and middle. And driven into the covers, half push, half drive. And a good stop there by Laura Wulfar. But they get a couple for that. So Shefali Verma also in the very first delivery on her way to an India 5-0 loss. The first over, just the one delivery still to come from Marizan Cup. So controlled over here by Marizan Cup. Also interesting to see that five deliveries, Marizan Cup hasn't given the ball too much pace, because she knows that pace on the bat, and Shefali Verma will go after her if it's a length ball. Here is Marizan Cup into Shefali Verma on the pad. Once again, turn around the corner. That might well carry down to the boundary. The first four of the match coming up down to the square leg boundary for four.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: और शेफाली वर्मा के बल्ले से ये चार रन जो निकलकर बाहर गया, और इस चौके के साथ इस मैच का पहला चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकला, और भारत ने पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बनाए हैं. और अच्छी शुरुआत, हालांकि जो गेंद थी वो ऑफ स्टंप के बाहर रखी गई थी, और ये आखिरी गेंद सिर्फ लेग स्टंप को छोड़ती हुई और उसे हल्का सा दिशा भर दी शेफाली वर्मा ने, और गेंद सीमा रेखा को छोड़कर बाहर जाती हुई. और पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में भारत का स्कोर रहा 9 रन बिना किसी नुकसान पर. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ये जो वुमेन्स टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें जो पॉइंट टेबल है ए ग्रुप में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक 3 मैच खेल चुका है और तीन मैचों से 6 अंक अर्जित कर चुका है. भारत ने 2 मैच खेले. आज भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैच, तीसरा मैच वो खेल रहे हैं. बांग्लादेश ने 3 मैच खेले हैं, 4 अंक उन्होंने अर्जित किए. साउथ अफ्रीका का ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा मैच, और पाकिस्तान और नीदरलैंड्स भी 3-3 मैच खेल चुके हैं. इस्माइल अपने नए ओवर के साथ सामना करती हुई स्मृति मांदना, अच्छी गेंद थी, कवर्स पर उसे पुश किया, फील्ड किया गया बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन पे. 1.1 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 9 रन. स्मृति मांदना खेल रही है 3 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 5 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली हैं, और शेफाली वर्मा 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं. अभी तक 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और भारतीय बल्लेबाजी की जो नींव है वो बननी शुरू होती हुई, और बहुत जरूरत है कि इस ओपनिंग साझेदारी से एक बड़ा स्कोर भारत को मिले. इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद, और उसे पुश किया मिड ऑफ पर, जब तक फेन को फील्ड किया जाता, तेजी से अपने अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने, और इस स्कोर के साथ स्मृति पहुंची 4 के अपने व्यक्तिगत योग पर. भारत 10 रन बिना किसी नुकसान पर 1.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद.
1: Yes, it'll be now. This is an interesting contest that we'll have to see. Shabnim Ismail to Shefali Verma, because compared to Marizan Cup, Shabnim Ismail is giving more pace on the ball, and that's what Shefali Verma likes. Very first over for Shabnim Ismail also. She's also got all the experience behind her. Remember, brought out of retirement for this World Cup. Outside the off jump, and that's been driven, square driven. That's gone down to the square cover boundary for 4.
2: ये लगा आभा का चौका,
0: और ये शानदार चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद थी और उसे पुश भर गया, टाइमिंग इसमें अच्छी थी, हालांकि फील्डर के पास से ये गेंद निकलती हुई, और ये 4 रन उनके बल्ले से निकलते हुए, और इन 4 रनों के साथ शेफाली का व्यक्तिगत स्कोर पहुंचा 10 के 10 पर. 3 गेंदे अभी उन्होंने खेली है, और भारत 1.3 ओवर के बाद 14 के अपने स्कोर पर. इस्माइल अपने ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द स्टंप्स लेग स्टंप के बाहर थी, हल्का सा उसे पुश किया, और जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने का, और स्कोर पहुंचा इसके साथ 15 रन भारत का बिना किसी नुकसान पर 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद. भारत टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ, निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दूसरी इनिंग्स में जो पिच एक्सपर्ट्स की थी, उनकी राय थी कि गेंद स्पिन लेगी, और भारत ने अपने इस खेमे में 3 स्पिनर्स को चुना हुआ है राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर और से पुश भर किया और गेंद सीमा रेखे के बाहर, चार रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: स्मृति मांदना के बल्ले से ये कवर बाउंड्री के बाहर खूबसूरत शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को सिर्फ पुश भर किया एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से अच्छी टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट और उनके बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका। स्मृति अदानी मांदना पहुंची 8 के अपने व्यक्तिगत योग पर, 7 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं और 1.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 19 पर। एक अच्छी शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों को। राइट आर्म ओवर द स्टंप, लेग स्टंप के बाहर और ये 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और उसे हल्का सा सिर्फ दिशा दी और गेंद सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 23। स्मृति मांदना खेल रही हैं 12 के अपने व्यक्तिगत योग पर, शेफाली वर्मा खेल रही हैं 11 के अपने व्यक्तिगत योग पर और रन रेट भारत का अभी 11.5। कैप ने एक ओवर डाला, 9 रन दिए और इस्माइल ने अभी तक एक ओवर डाला है, 14 रन दिए हैं, कोई एक्सट्रेस नहीं है। 18 ओवर बाकी बचे हुए हैं और इन 18 ओवरों में बहुत एक बड़े स्कोर की तलाश में भारतीय टीम रहेगी ताकि पहले बल्लेबाजी का निर्णय जो उन्होंने लिया है उसमें वो कामयाब रहे और एक अच्छा स्कोर सामने रखे साउथ अफ्रीका के, क्योंकि बहुत ही गहरी बल्लेबाजी है साउथ अफ्रीका के पास।
1: 23 फॉर नो लॉस। Once again, with that said, the off-stump, the first ball of caps, they've kept a sweeper cover of the very first delivery. Now, this is what's been happening in the first two overs. India, of course, winning the toss and batting first from South Africa's perspective. They've got two experienced bowlers out there, and that's Murray Zandkarp and Shabnam Ismail. Now, what they've been doing is either bowling on the pads or a lot of width outside the off-stump, and that is tailor-made deliveries for Smriti Mandana and Shefali Verma to score off. Now, they'll have to try and hit the top of our ball in that corridor of uncertainty. Once again on the pass, the next delivery to Smriti Mandana. Nicely played on the onside for one more. So, two singles of Karp's over. And Karp, of course, gave 9 runs in the first over, whereas Shabnam Ismail gave 14. And Karp gave 1 boundary and Shabnam Ismail 2. And that's what, from India's perspective, one must say, this is a very, very good start. Very sure start. Murray Zandkarp this time to Shefali Verma. Once again on the pads. Overbalances offense. Shefali Verma, but plays it nicely off the pads down to square leg for a single. When you bowl on the pads, you just roll the wrists on that one and enough runs there to get. One more to Shefali Verma. She's up to 13 of 6. Smriti Mandana is 13 of 9. India 2.3 overs. 26 for no loss. And this is certainly, that's why we say, a very, very good start for India. The current run rate already, 10.4. Here is Murray Zandkarp, this time to Smriti Mandana on the leg and middle stump. Beautifully driven on the onside. Might well carry down to the long on boundary for 4.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: The timing on that was so good. Now, when a ball gathers momentum on the turf as it travels, tells you a lot about that timing. On the pads for sure, but how well was that timed? Beautifully timed, gathered momentum on the turf as it went down to wide long on for 4. Cap is certainly distraught, but if you're going to continue bowling on the pads with outside off stump, this is what's going to happen. You're going to go for boundaries.
0: 2.4 overs ke baad Bharat 30 ke apne score par pahuncha hua. Smriti Mandana 17 रन पर खेल रही हैं, 10 गेंदें अभी तक उन्होंने खेली हैं। कैप की अगली गेंद और उसे कट किया लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, एक पूरी जिसको बोलते हैं कॉरिडोर लगा रखा है ऑफ साइड पर स्मृति मांदना के लिए, क्योंकि सबको मालूम है और खासतौर पर साउथ अफ्रीका की टीम को यह मालूम है कि उनके जो बल्ले हैं वो स्क्वायर की तरफ ज्यादा चलता है और बहुत एक्यूरेट भी चलता है, प्लेसिंग और टाइमिंग दोनों अपने पास रखती हैं वो।
1: एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू मेड। Actually, Murray Zandkarp lucky to get away with that. That the short outside the off-stump enough width just went straight to that fielder at point. Wide of the keys is Murray Zandkarp and she's bowled. Look at that ferocious look on Murray Zandkarp. Went wide of the crease, changed the angle, brought that ball into the left-hander and Smriti Mandana is castled. Just as we were saying, that in India got a good start over here. 30. They lose the big wicket of the in-form Smriti Mandhana. Clean bowl by Marizan Kapp.
0: एक बहुत ही नए तरीके की शॉट खेलने की कोशिश करी. हालांकि स्मृति मंदाना ऐसी शॉट्स खेलती हैं, लेकिन अभी समय और टाइम नहीं था इस शॉट को खेलने का. पूरी तरह से बीट हुई, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही थी मैरिजन कॉप. एक शानदार ऑलराउंडर है और समझती हैं गेंद को, इसलिए उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल रखी और एक नई जिसे स्कूप के रूप में उठाने की कोशिश की थी स्मृति मंदाना ने, और पूरी तरह से बीट हुई और गेंद जो थी बिल्कुल विकेट के ऊपर थी और पूरी तरह से छकाया उन्होंने और बोल्ड किया. एक बहुत बड़ी विकेट साउथ अफ्रीका ने अपने लिए अर्जित करी और स्मृति मंदाना के रूप में 17 रन बनाकर वापस पवेलियन में.
1: Absolutely, you know, the thinking is what I liked over there. Absolutely, she went wide of the crease. As we said that, suddenly we saw she going wide of the crease, brought that ball in. Most of the deliveries were on the pads or outside the off spot or width. For a change, went wide of the crease, brought it in. Good thinking, Smriti. Of course, tried to play the modern T20 game stroke, the scoop over fine leg. But also the slow ball, so it went through, the bat went early, the ball went through, and that was the end of Smriti Mandhana. It's a huge wicket, I can tell you, because Smriti Mandhana is in form, and that's why you saw, I mean, Marizan Kapp was so ferocious out there. Three overs bowled, 30-1, Yastika Bhatia comes in. Now India need a very, very good partnership from here on. Chloe Tryon. Well tossed up, and she's found the gap over there. Shefali Verma between extra cover and mid off down to the wide long up boundary for four.
2: ये लगा आभा का चौका.
0: और शिफाली वर्मा के बल्ले से ये निकलता हुआ खूबसूरत चौका ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. आगे बढ़कर कुछ कदम आगे निकाले और उसे कवर बाउंड्री के बाहर उन्होंने धकेला. चार रन के लिए एक खूबसूरत शॉट लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, लेग स्टंप के बाहर गेंद, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: Well, Shefali is not going to stop. If you're going to bowl those kind of ones, the last delivery was exactly there for the sweep. And Shefali Verma goes through with it down to the backward square leg boundary for four. Beautifully played. 38-1 India. 3.2 overs. I just wonder, was it right to bring in Chloe Tryon? Round the wicket. Here's Chloe Tryon. This time to Shefali Verma, who goes down the wicket. Lofts it out and high. Has she got the distance? Over long go for the first six of the match.
2: ये लगा आभा का छक्का.
0: और इस मैच का ये पहला छक्का शेफाली वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ आगे बढ़े और उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजा. उन्होंने खूबसूरत स्ट्रोक पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे टाइमिंग के साथ इस गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया. 74 मीटर लंबा ये छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, और इस छक्के के साथ भारतीय स्कोर जो बढ़ता हुआ 44 रन पर पहुंचा एक खिलाड़ी के नुकसान पर 3.3 ओवर्स की समाप्ति के बाद. के अभी तक 7 चौके और एक छक्का लग चुका है बल्लेबाजों के रूप में, और शिफाली रुकने का नाम ही ले रही. अगली गेंद को उन्होंने धीरे से डिफ्लेक्ट किया डीप मिड विकेट की तरफ. एक प्रोटेक्शन लगाई गई थी जो डीप मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया गया बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले.
1: Prior to the single, she was 27 of 9. That means a strike rate of 300. And that's an enormous strike rate for an opening batter to start off from. And that's why I would question this change. I mean, Shabni Mismail went for a lot of runs in the first over. That's right. But she's got all the experience. And she's a very shrewd bowler. I wonder whether it was a good change to take her off. Here's Chloe Tryon this time from over the wicket. Short in lane outside the off jump. Beautifully played by Yastika Bhatia. That's her first delivery. And that's down to square third man inside the 30 yard. They want a single which is not really available over there. They yes, no, and finally decide against it, which was the right decision, certainly, because there was no run. Here is Chloe trying for the last time in this over. That's a good ball. That's the incoming ball to the left hander. That's been punched away, and it will be cut off. The ball itself slows down just about 5 feet inside the square cover boundary. They take a couple, 4 overs bowled. India 47-1, the current run rate 11.75. Yes, they've lost a wicket, but still it's a good start for India.
0: जी, ये बहुत अच्छी स्टार्ट है क्योंकि 47 रन का जो स्कोर है चार ओवर्स की समाप्ति के बाद 11.75 की औसत पर

0: अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रही है। और खास तौर पर अगर आप देखें शेफाली वर्मा का जो बल्ला है उसकी टाइमिंग जो है वो बहुत बेहतरीन चल रही है, ज्यादा जोर से मारने की वो कोशिश नहीं कर रही, गेंद को प्लेस कर रही है, गेंद को टाइमिंग के साथ खेल रही है, जिसका नतीजा उन्हें मिल रहा है। अभी तक उनके बल्ले से चौके और छक्कों की खूबसूरत बरसात होती हुई और भारत 47 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। कैप ने अभी तक दो ओवर डाले हैं, ट्रायन ने एक ओवर डाला है और शबनम इस्माइल ने जो एक ओवर डाला था उसमें भी उन्होंने 11 रन दिए थे। लेकिन अगर आप बात करें तो मैरिजोना कैप जिस गेंद पर केके उन्होंने आउट किया था स्मृति मांधना को, वो गेंद अपने आप में सब कुछ बोल रही थी और उनका एक्सपीरियंस उसमें उन्होंने पूरा झोंका हुआ था, तभी तो उन्हें विश्व का बेहतरीन ऑलराउंडर बोला जाता है।
1: Absolutely, but that's about Marizan Cup. That the thinking was good, as I said earlier, going from wide of the crease and bringing that ball into the left-hander. Having said that, Shefali Verma is on a roll of what over here. And we've seen one glorious extra cover drive, the lofted drive over long off for a six. We've seen the sweep. We've seen the short pitch delivery being pummeled away past mid-wicket. So we've seen a wide repertoire of strokes already from Shefali Verma. And that is a very good start, augurs well for India over here for sure. Yastika Bhatia is in, and you know, at this stage, 47 for one is certainly a very good start for four overs. That's almost close to about 12 runs an over, 11.75. Yes, Caps adding a fresh over on the leg stump, and that's been driven beautifully. There's a sweeper that'll cut off, and that was an attempted yorker converted there by Shefali Verma. And driven beautifully down to the fielder at position, guarding that mid-wicket boundary. And that means one more to the Indian total. Two short of a 50 now. 48 for one, India. 4.1 overs. Remember that Harmanpreet Kaur is playing her 200th T20 international, which is a record, a global record. A fantastic moment for the Indian captain. Here is Marizan Cup. To the left-handed Yastika Bhatia, that's a much better delivery, not much pace on that one. Beautifully driven straight round the ground, a lovely stroke down to the side screen for four.
2: ये लगा आभा का चौका।
0: ये यशिका भाटिया के बल्ले से जो स्ट्रेट ड्राइव निकला है वो स्ट्रेट ड्राइव इतना सीधा था कि मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच में बिल्कुल सीधी एकदम स्ट्रेट जिसे बोलते हैं उसके साथ ये चौका मिला और बल्ले दोनों मिड ऑफ और मिड ऑन को किसी भी खिलाड़ी को मौका नहीं मिला इस गेंद को रोकने के लिए। और भारत ने अपने 50 रन पूरे किए हैं 26 गेंदों का सामना करते हुए। भारत का स्कोर पहुंचा है 52 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 4.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद। यशिका भाटिया खेल रही है 6 के अपने व्यक्तिगत योग पर और शेफाली वर्मा 11 गेंदों पर 29। अगली गेंद यशिका भाटिया को हल्के से उसे पुश भर किया उन्होंने, कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया। अच्छी गेंदबाजी कर रही है कैप, क्योंकि कैप को यह मालूम है कि यह जो तीसरा ओवर उनके कप्तान ने उनको लगातार दिया है पावर प्ले में ही, इसलिए दिया गया है कि वो कुछ विकेट्स चटकाएं और बल्लेबाजी को नियंत्रण में रखें। इसलिए आप देखें कि वो गेंद सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर बाहर कर रही है और थोड़ा सा अपनी लाइन को पीछा भी खींच रही है।
1: From by the case, here's Marizan Cup, this time to Yastika Bhatia. Now, what is Marizan Cup trying to do over here? Bowled a similar kind of delivery, which got rid of Smriti Mandana. Wide of the crease, into the left-hander. And Marizan Cup, of course, got the success of Smriti Mandana. But she's trying something similar with Yastika Bhatia. And the one that was a little bit overpitched went down the ground for a four earlier on in this over. Marizan Cup. From by the crease to Yastika Bhatia outside the off stump and completely misses contact. Once again, one of the things that Marizan Kapp is trying definitely repeatedly is not give any pace on the ball. And this power play is going to be very, very important. 52 already. India will probably aim to get somewhere around 65, which means there'll be an excellent power play, even though they've got rid of Smriti Mandana. But still, it'll be a very good power play if India can get to somewhere around 65 or so. Wide of the crease, last ball of Caps over, and she tries to scoop it over. Does Yastika Bhatia, almost like Smriti Mandana, but this time doesn't make contact and through to the wicketkeepers. Five overs bowled. India with a run rate of 10.4, 52 for one.
0: 10.4 के औसत के साथ ये स्कोर बन रहा है 52 अभी तक भारत का स्कोर है एक विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर से समाप्त हो चुके हैं। आखिरी गेंद को अगर आप देखें तो मैरिसन कॉप ने सीधी वही गेंद डाली थी जिस गेंद पर उन्हें यस विकेट मिला था स्मृति मांदना का, और इस बार यशिका भाटिया भी पूरी तरह से चकमा खा गई। सेम वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुई, और भाग्य का बहुत साथ रहा उनके साथ कि गेंद इस समय इस बार विकेट को छोड़ रही थी, विकेट पर नहीं थी। हालांकि अगर विकेट पर होती तो वो भी क्लीन बोल्ड हो जाती, पूरी तरह से बीट हो गई थी। स्ट्रोक लगाने से पहले उन्होंने जैसे मन बना लिया था कि मैं स्कूप जरूर करूंगी लेकिन इस स्कूप्स का फायदा नहीं हो सका। इस्माइल अपना अगला ओवर लेकर आती हुई, शबनम इस्माइल इस पावर प्ले का छठा और बहुत अहम हो। शिफाली वर्मा उनके सामने।

0: beyond over number 16 or 17, or even for that matter, beyond the 15th over. She's got the ability to end with a flourish. Here's the next one that's played uppishly over the heads of the infield at cover from outside the off stump by Jemima, down to sweep a cover for just a single. That single will take India into the 70 for three.
1: भारत का स्कोर 70 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 8.24 की औसत से ये रन बनते हुए, और भारत ने पिछली 12 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं स्कोर करी है, इसलिए ये जो स्कोर है, स्कोर रेट है, वो नीचे आता हुआ 10 से 9, 9 से अब 8.24 पर, और आखिरी विकेट जो गिरी थी 67 के योग पर वो थी यशिका भाटिया की, और शबनम इस्माइल अपना पूरा का पूरा जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो झोंकती हुई अपनी गेंदबाजी पर अपने तीसरे ओवर के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप पर गेंद उसे हल्का सा पुश किया, और जब तक खुद वापस दौड़कर पहुंचती हुई शबनम इस्माइल बल्लेबाजों के पास मुस्तैदी से आंखों ही आंखों में इशारा किया हरमनप्रीत ने और जमीमा रॉड्रिक्स ने, अपने अपने छोर बदले, और भारत का स्कोर 8.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद पहुंचता हुआ 71 रन तीन खिलाड़ियों के नुकसान पर, बहुत ही एक मुस्तैदी से चुराया हुआ ये रन, आंखों से इशारा किया और फिर अपने अपने छोर बदले। हालांकि ये कॉल जमीमा रॉड्रिक्स की थी क्योंकि सामने से वो देख रही थी बल्लेबाज को, और उस कॉल को हरमनप्रीत ने हाँ बोली और दोनों ने अपने अपने छोर बदले। भारत 71 रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 8.4 ओवर की समाप्ति के बाद, और शबनम इस्माइल अपने ओवर की पांचवी गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ऑफ स्टंप पर गेंद और उसे हल्का सा पुश किया, स्केयर लेग पर खड़े फील्डर ने भागकर इस गेंद को पकड़ा और पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास अपने अपने छोर बदलने के लिए, और स्कोर इस एक रन के साथ 72 पर पहुंचा। 8.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 72 तीन रन तीन खिलाड़ी के नुकसान पर, हरमनप्रीत कौर खेल रही हैं 2 के अपने व्यक्तिगत योग पर, जमीमा रॉड्रिक्स 7 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही हैं, और अगर आप बॉलिंग को देखें तो तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं वो एक ही स्पीड के आसपास गेंदबाजी कर रहे हैं ताकि बल्लेबाज को ये सोचने के लिए मजबूर किया जाए। अगली गेंद ऑफ स्टंप लेग स्टंप पर थी और उसे हल्की सी दिशा दी स्क्वेयर लेग की तरफ, गेंद को फील्ड किया गया लेकिन पर्याप्त समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने के बाद, और इस एक रन से स्कोर पहुंचा 73 पर तीन खिलाड़ी के नुकसान पर 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद 8.11 की औसत से अभी जो स्कोर बन रहा है जिसमें हरमनप्रीत के 3 रन है, जमीमा रॉड्रिक्स 7 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है, जो 3 विकेट्स गिरी है अभी तक वो स्मृति मांदना 17 के अपने व्यक्तिगत योग पर, शिफाली वर्मा 31 की अपनी तेज तरार पारी को समाप्त किया था उन्होंने, और यशिका भाटिया जो अपनी टाइमिंग से आज अच्छी बल्लेबाजी दिखा रही थी 15 के योग पर LBW करार दी गई।
0: One of the reasons why India elected to bat first, we believe, after winning the toss is because the wicket will turn in the second for the second team batting, and India have got the spin attack, but they need to put a good amount of total batting first on the board for the spinners to have some purchase and come to the party. They're also having Prema Rawat, the leg spinner, 24-year-old, who is making a debut, and she's the 94th player to play T20s for India. Malaba, meanwhile, starts a fresh over round the wicket. Once again, no pace on that one at all. Just a hint of turn, but not much on the leg and middle stump. Patted back along the wicket by Harmanpreet Kaur. 3 or 4 she is. She won't be in a hurry. She knows that if she spends enough time there, she can end with a flourish, as I said earlier. Jemima is 7 over. Malaba, short and length outside the off stump, and waits for it. And then square cuts it away down to back foot point for a couple. And that couple will take Harmanpreet to 5 now. And India are 75 for 3. So, you know, one of the things that managed ensured that Shabnam Ismail got wickets. First over, she gave pace to the ball around 120 as we watch Malaba once again. Well tossed up this time on the leg and middle stumps, waits for it, does Jemima and turn it around the corner. Look at that. You know, one thing interesting, no pace of the ball at all. The batter has to wait for it and keep on waiting, and then the ball comes to the batter and try to turn, use the wrist and turn it around the corner. So that's what's Malaba's secret.
1: देखिए मलाबा की अभी जो गेंदबाजी हो रही है वो धीमे करे अगली गेंद और उसे उठाकर मारा है उन्होंने 4 रन

0: ये लगा आभा का चौका.
1: Lovely stroke there from Jemima Rodrigues. That was in the air for a long time. Outside the off-stump, got right under it. And there was, she'd seen the field over there. Nobody really in that wide long up position. Picked her spot and beautifully played it. A lofted off drive down to the wide long up boundary for four. That will be a boundary after 18 balls. That tells you what's been happening in the last three overs or so. The after getting three wickets, the South Africans have clawed their way back, putting the Indian batters under a tight leash. But the Indian batters out there, experienced, know very well what is needed is spend a few overs out there and then take the attack back to the South African bowlers. Malaba this time on the leg and middle stumps. Ball straightens up after pitching, waits for it as Jemima nicely turns it round the corner with a wrist down to backward square leg for a single. And now India 81 for 3. 67 is when the last wicket failed. So these two have added 14 already, and India's current run rate is 8.24. Last ball, Malaba's over, well tossed up, and Harmanpreet is content with a controlled drive down to long on. So 9 runs coming off the Malaba over, halfway mark at the end of 10 overs. India 82 for 3.
2: 8.2 ki ausat se ye jo ballebazi ho rahi hai, 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत 82 रन में 3 खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत कौर खेल रही है 7 के अपने विकेट के योग पर. और जमीमा रॉड्रिक्स ने अभी अभी जो 18 गेंदों के बाद 19वीं गेंद पर चौका लगाया, उस चौके की बदौलत 12 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है. और 15 रन की जो भागीदारी है इन दोनों के बीच में अभी तक हो चुकी है. 3 खिलाड़ी जो भारतीय टीम ने खोए हैं अभी तक, पहली विकेट स्मृति मांदना 17 रन पर 30 रन की भागीदारी हुई थी पहली विकेट के लिए, दूसरी विकेट शिफाली वर्मा 31 रन पर आउट हुई, 24 रन की भागीदारी हुई थी दूसरी विकेट के लिए, और तीसरी विकेट यशिका भाटिया के रूप में आउट हुई. यशिका भाटिया 15 के अपने व्यक्तिगत योग पर आउट हुई, और 13 रन की भागीदारी हुई थी तीसरी विकेट के लिए. 15 रन की भागीदारी अभी तक की इन जमीमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर के बीच में हो चुकी है. और भारत अभी 82 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर स्कोर है अभी भारत का. ये जो टूर्नामेंट आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खेला जा रहा है, भारत आज अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेलता हुआ अगले ओवर के साथ डी क्लार्क को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है डी क्लार्क, तेज गेंदबाजी भी करती है और बल्ले से भी तेज रन बनाने की वो हमेशा कोशिश में रहती है. 83 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत ने पहली गेंद पर एक रन चुनाया. अब जमीमा रॉड्रिक्स से सामना करने वाली है डी क्लार्क की अगली गेंद का. भारत 83 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 10.1 ओवर की समाप्ति के बाद 8.16 की औसत से ये रन बनते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. और ये उठाया है और ये आउट, बहुत ही आसान सा कैच, बॉलर ने खुद पकड़ा अपनी गेंद पर और डी क्लार्क ने एक वो विकेट चटकाई है कि जिससे एक जो सबसे जरूरी भागीदारी बनने की कोशिश की जा रही थी. और ये जो दोनों बल्लेबाज हरमनप्रीत और जमीमा रॉड्रिक्स, जिन्हें ये बोला जाता है कि ये बहुत लंबी पारी खेलने की क्षमता अपने पास रखते हैं, उसे सिर्फ मोड़ने की कोशिश करी गई थी लेग स्टंप की तरफ, बल्ले ने बाहरी किनारा लिया और एक आसान सा ही कैच अपनी ही गेंद पर डी क्लार्क ने पकड़ा और भारत ने जमीमा रॉड्रिक्स के रूप में अपना चौथा विकेट गवाया. भारत 83 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 10.2 ओवर्स की समाप्ति के बाद.
1: नडी डी क्लार्क स्टार्टिंग दैट ओवर विद द फर्स्ट डिलीवरी दैट वाज बॉल्ड जस्ट ओवर 101 क्लिक्स एंड वेरी क्लियरली द साउथ अफ्रीकन्स हैव अंडरस्टूड डोंट कीप पेस ऑन द बॉल. That's the way to get wickets. We saw Shabnam Ismail doing that in the second and third over. Nadine de Klerk starting exactly in the same manner. And that ball to Jemima Rodrigues coming through very slowly off the wicket as well. Deliberately bowled that way. And the bat went through and that's why the ball ballooned up in the air for an easy return catch for de Klerk on a follow through. Now India in a spot of bother for sure. 83 for 4. Smriti Mandana, Shefali Verma, Yastika Bhatia, Jemima Rodrigues already back in the hut. I presume Deepti Sharma will be replacing Jemima Rodrigues out there in the middle. She's got all the experience, but After that will be Richa Ghosh. But Richa Ghosh can do a lot of tonking, but she's good when she comes in a little later on the leg and middle. The first delivery from Nadine Clerk to DP Sharma, and she manages to roll a wrist on that one, playing down to mid wicket for a single. She's off the mark in the very first delivery. As we watch that delivery that Nadine Clerk bowled to Jemima Rodrigues again in the monitor, and we see that it bowled so slowly, and Jimmy Rodrigues went through with the stroke. The ball came in later, took the top half of the bat, ballooned in the air, and was a good return catch. Yes, Nadine De Klerk this time to Harmanpreet Kaur, and that's once again a good delivery on the leg and middle stumps, and Kaur plays it back along the wicket. No runs result. And they are pumped up, the South Africans, after getting these four wickets. They know they are back in the game big time over here. If they get one more wicket over here, it's only Richa Ghosh, because after that India have got Prema Rawat, Sri Charani and Nandini Arundhati Reddy. So not much of batting to come. So this pair has a huge responsibility, and there's a lot of cricket to be played in this Indian batting inning. Just 10.4 overs, or just the two runs and a wicket. De Klerk tries to go for the block hole, slower through the air once again, and played on the onside by Harmanpreet Kaur for a single. The captain certainly realizes for sure that everything will revolve round over here, and I'm sure from here on Harmanpreet Kaur will want to take it very deep to the very end and play till the very end.
2: De Klerk, Nandini Clark jo gendbazi kar rahi hai, 26 वर्षीय नंदिनी क्लार्क एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका की टीम के, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी उन्हें गेंदबाजी के लिए टीम की तरफ से निमंत्रण दिया जाता है, हमेशा विकेट चटकाने के लिए वो तैयार रहती हैं। गेंदबाज जो गोल्डन आर्म के साथ है, अगली गेंद उसे हल्का सा मोड़ा दीप्ति शर्मा ने, जब तक गेंद को डीप मिड विकेट तक फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों ने दो रन चुराए, और इन दो रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 87 रन चार खिलाड़ी के नुकसान पर 11 ओवर्स की समाप्ति के बाद 7.91 के रन रेट से अभी भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही है। नन्नी डी क्लार्क ने पहले ओवर में 5 रन दिए, लेकिन इन 5 रनों की साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही बेशकीमती विकेट जमीना रॉड्रिक्स के रूप में लिया, जिन्हें उन्हें खुद ही उन्होंने अपनी गेंद पर कैच किया। और के जैसे आप कह रहे थे कि भारतीय टीम अब स्टेट ऑफ बॉर्डर में हल्का सा महसूस कर रही है, क्योंकि ये एक रिकॉग्नाइज्ड बैटिंग प्लेयर है जो अभी गेंद बल्लेबाजी कर रहा है दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत कौर के रूप में। इसके बाद ऋचा घोष अच्छी बल्लेबाजी करती हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं, लेकिन इन दोनों को अब कुछ लंबा खेलना होगा ताकि एक अच्छी साझेदारी करी जाए।
1: Without doubt, they have to take it deep. Short and length, the first ball of Chloe Trans over. That's been squared away. A good stop and eludes a diving fielder there down to the boundary for four.
0: ये लगा आभा का चौका.
1: Going over the boundary ropes for four.
2: हरमनप्रीत कौर से के बल्ले से यह पहला चौका निकलता हुआ, और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचता हुआ 91। कट किया था इस गेंद को, हालांकि डीप पॉइंट पर से फील्ड करने की भरपूर कोशिश करी गई, हाथ भी लगा, लेकिन गेंद छटक कर सीमा रेखा से बाहर पहुंचती हुई। हरमनप्रीत का स्कोर पहुंचा 13 पर, भारत 91 रन पर। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद नीचे थोड़ी सी रहती हुई, और बहुत ही सूझबूझ के साथ उस गेंद को वहीं दबा दिया हरमनप्रीत कौर ने। उनके दिमाग में इस समय चल रहा होगा कि मुझे कुछ लंबा खेलना होगा, टीम की कप्तान भी है, अच्छी बल्लेबाजी करती है। ट्रायन अपने ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप ऑफ स्टंप पर, और ये एक स्पेशल फील्ड शॉट मिड विकेट के रूप में लगाया गया है, ताकि जो सिंगल्स हैं जो चुराने की कोशिश करती हैं हरमनप्रीत कौर हमेशा, उसे भी रोक लिया जाए इस फील्डर के रूप में। 91 खिलाड़ी के नुकसान पर ट्रायन की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा उसे पुश किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने अपने छोर बदलने के लिए, और 92 पर 4 11.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद।
1: गिवन द फैक्ट इन वे इन व्हिच मलाबा एज वेल एज मरिजन काप एंड शब्दी मिजमेल बोल्ड सो वेरी वेल, दिस इज गुड थिंकिंग हियर बाय लॉरा वुल्फार्ड गेटिंग इन क्लोई ट्रायन, बिकॉज प्रॉबली शी इज द बॉलर दैट द इंडियंस विल गो आफ्टर to step up the run rate, which was once over 11.5, now dropped to 7.9. You know, you can't always have 11.5, but when you've lost four wickets, here is first the next delivery from Chloe Trant over the wicket. this time to Deepthi Sharma on the off and middle. Not much turn. Played away back along the track and no runs result. So after that first boundary in the very first delivery, she's come back well here, Chloe Trine. The point is, will she end it well? And so what I was talking about is good thinking by Wulfat, getting her a fifth option bowler over here, Chloe Trine, trying to see if she can send in a couple of decent overs and not go for too many runs. That'll increase the pressure. Trine this time to Deepthi Sharma, swept around the corner, but there is a fielder that plays exactly for that, right on the back foot square leg boundary, just the one. So Chloe Trine ends the over conceding just 6 runs at the end of 12 overs. India are 93 for 4. The current run rate 7.75. And the last over from Chloe Trine, just the 6 runs. She bled in the first over for 17. A good comeback over here by Chloe Trine.
2: बिल्कुल जी, तब दीप्ति शर्मा का, तब शफाली वर्मा का बल्ला चल रहा था जब 17 रन उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दिए थे और इस ओवर में उन्होंने 6 रन दिए. 2 ओवर में अभी तक उन्होंने 23 रन अर्जित किए हैं बिना किसी विकेट के और भारत का स्कोर पहुंचता हुआ 93 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर. हरमनप्रीत कौर 14 पर बल्लेबाजी करती हुई और दीप्ति शर्मा जो अभी अभी आई है 4 के अपने व्यक्तिगत योग पर खेल रही है. 12 ओवर्स की जो गेम है हो चुकी है. इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो मैच है, बहुत अहम मैच भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए, और अभी तक 12 ओवर्स में 93 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर. बाकी के 8 ओवर्स में क्या स्कोर होगा? अगली गेंद खाका की और उसे कट करने की कोशिश करी थी लेकिन शॉर्ट पॉइंट पर उस गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन भागकर 1 रन चुराने में कामयाब रही भारतीय बल्लेबाज हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा. हरमनप्रीत अब सामना करेंगी खाका का, आयोबंगा खाका. एक बेहतरीन तेज गति की गेंदबाज है. भारत 94, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 12.1 ओवर्स में 7.73 का स्ट्राइक रेट है भारतीय टीम का और कप्तान बहुत संतुष्ट होगी. राइट आर्म ओवर द स्टंप, हल्के से पुश किया और कवर्स पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन के लिए पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों के साथ. स्कोर पहुंचा 95 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर भारत. और जो 4 खिलाड़ी अभी तक आउट हुई हैं, स्मृति मांदना 17 पर, शिफाली वर्मा 31 के व्यक्तिगत योग पर, यशिका भाटिया 15 पर आउट हुई और आखिरी विकेट जो जमीमा रॉड्रिक्स के रूप में गिरी थी जिन्होंने 12 रन बनाए थे. भारत 12.2 ओवर में 95 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर. अगली गेंद खाका की, ऑफ स्टंप के बाहर और उसे कट किया है. गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जाती हुई, गेंद खूब धीमी होती हुई और बाउंड्री के पास जाकर उसे खुद रोका, लेकिन इस बार बहुत तेजी से रन चुराए भारतीय बल्लेबाजों ने. 3 अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा की तरफ से और इन 3 रनों के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 98 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर. 12.3 ओवर्स के समाप्ति के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेला जा रहा है ग्रुप ए का, क्योंकि इस मैच की जीत के बाद दोनों टीमें अपने आप को सेमीफाइनल के दरवाजे के पास पाती हुई. खाका अपने ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. हरमनप्रीत ने इस गेंद को हल्का सा पुश किया, बॉल को जब तक कवर पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों के पास समय थे अपने अपने छोर बदलने के लिए और स्कोर पहुंचा 99 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर. 12.4 ओवर्स की समाप्ति के बाद आयोबंगा खाका ने अभी तक अपने 1.4 ओवर्स में 9 रन खर्चे हैं और 1 विकेट भी उन्होंने अर्जित की है. हरमनप्रीत 16 पर खेल रही है और सामना कर रही है दीप्ति शर्मा आयोबंगा खाका के इस ओवर की 5वीं गेंद का. राइट आर्म ओवर द स्टंप, ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, उसे पुश भर किया, डीप कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया और इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 100 रन. और ये भारत ने जो अपने दूसरा 50 रन भारत ने जो बनाया है, अब 100 रन 51 गेंदे लगी. हालांकि पहले 100 को, पहले 50 को बनाने में 26 गेंदे लगी थी और दूसरे 50 रन अर्जित करने के लिए भारतीय टीम को 51 गेंदों का सामना करना पड़ा. और अब भारत जो है वो 100 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 12.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद इस ओवर की आखिरी गेंद, उसे हल्का सा पुश किया, बॉल को डीप कवर पर आकर फील्डर ने फील्ड किया। 101 रन पर स्कोर पहुंचा भारत का। चार खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत पहुंची 17 के योग पर और दीप्ति शर्मा 9 रन पर बल्लेबाजी करती हुई। 18 रन की भागीदारी इन दोनों बल्लेबाजों के रूप में दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है और बाकी के जो बचे 7 ओवर हैं के भारत उसमें एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा। हालांकि गेंदबाजी बड़ी चतुराई से करी जा रही है और कप्तान जो वॉलमार्ट है वो बहुत ही मजी हुई प्लेयर हैं और बहुत ही तरीके से अपने गेंदबाजों को बदल रही है। लौला वॉलवर्डाट एक ऐसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक ऐसी एक्सपीरियंस कप्तान है जिन्हें मालूम है कि गेम के पेस को कितना रोकना है और कब किस बॉलर को बॉल गेंदबाजी दी जाए ताकि बल्लेबाजों को बांध के रखा जाए।
1: इंडिया's first 50 game of 26 balls, that's when Shefali Verma was on a roll as the first ball of a fresh over from Laba fetches India one more, that takes India up to 102 for 4. The current run rate is 7.75. India's second 50, 51 to 100, came in 51 deliveries, and that tells you a story in itself. Double the number of deliveries for the second 50. That's what happens when you lose wickets. Current run rate is 7.75. Malaba now from round the wicket this time. The DP Sharma goes for a favourite sweep and manages to get over the infield down to the back foot square leg boundary for 4.
0: ये लगा आभा का चौका।
2: दीप्ति शर्मा के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए और इस चौके के साथ भारत का स्कोर पहुंचा 6। स्केयर विकेट खेलना चाहती थी दीप्ति शर्मा, कामयाब भी हुई। हालांकि जो स्ट्रोक वो खेलना चाहती थी उसके लिए कामयाब ना हो सकी, लेकिन 4 रन उन्हें जरूर मिले और इन 4 रनों के साथ दीप्ति का स्कोर पहुंचा 13। मलावा अपने ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर और हल्का सा उसे दिशा भर दी और 3 फील्डर्स उस गेंद को रोकने के लिए पहुंचे और जब तक गेंद को रोका जाए, थ्रो किया जाए वापस, तब तक पर्याप्त समय था 1 रन के चुराने के लिए और इस 1 रन के साथ 107 पर पहुंची भारतीय टीम का स्कोर। 4 खिलाड़ी के नुकसान पर हरमनप्रीत कौर खेल रही है 18 पर और दीप्ति शर्मा 14 के अपने व्यक्तिगत योग पर।
1: नेक्स्ट डिलीवरी पुल राउंड द कॉर्नर एंड दे गो थ्रू फॉर अ रन, गुड कॉलिंग एंड गुड रिस्पॉन्स देयर। सो 7 रन्स एंड 4 डिलीवरीज इन दिस बराबर ओवर सो फार। Malaba has conceded 23 runs in 2.4 overs, more than normally what she does by her miserly standards. India's run rate is 7.9. Malaba around the wicket this time, fetched from outside the off stump and driven down to wide long on for a single. So 4 singles and that one boundary in this over. That takes India up to 109. One delivery in this Malaba over remaining now. And if India continue to score, current rate will end up at 158. They must probably be looking at somewhere around 170. Malaba around the wicket, short and outside the off stump, cracked away between the third midfielder and the point fielder down to the back foot point boundary for 4. Lovely stroke for Hamilton.
0: Ye laga abha ka choka.
2: बेहतरीन स्क्वेयर कट हरमनप्रीत के बल्ले से और गेंद स्क्वेयर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए और इस चौके के साथ हरमनप्रीत पहुंची 23 के अपने व्यक्तिगत योग पर और भारत 113 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 14 ओवर की जो गेम है वो भारतीय टीम की हो चुकी है। हमारे जो स्टेटिस्टिशियन है मोहम्मद